0: ஆகாஷ்வாணி. தி நியூஸ் ரெட் பை மெஹவஷ் ஃபாத்திமா. பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இனாகுரேட்டட் சிஜி செமி ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் அவுட் சோர்ஸ்ட் செமி கண்டக்டர் அசெம்பிளி அண்ட் டெஸ்ட் பிளான்ட் இன் சானாத் குஜராத் எஸ்டர்டே. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: Aaj ka ye karyakram is baat ka pramaan hai ki Bharat jo thaan leta hai wo karke dikhata hai. 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
0: The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: Mujhe bataya gaya hai ki abhi yahan se har saal 20 crore chips niklegi.